0: जलपात हौ नेपाल सम्बचिन छ सौ पी खुद दिल्ला थु अष्टमी थु रेडियो नेपाल ख अनि नदीसँग जिरुबी पाके नेपाल भाषा या समाचार। सरकार निजी शिक्षा औ स्वास्थ्य लागे छगु सङ्गु प्रतिशत समता कर्चिकेगु खोजिगुदु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सामाजिक सञ्चाल पाखे थो व्यवस्था छेलाबुला यावले सकल मनुते त अझ उपखर्च वो हाठ्य फे मालिगु खने दुगु नेथना दिसे समता कर्चिकेगु खोचिनागु कनादिगु ख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले नापाया सल लिपा आया नीति शिक्षा समता शुल्क औ स्वास्थ्य समता शुल्क मछेलीगु कोचिनागु कनादिगु ख स्वङ्गु प्रतिशत समता कर है हेगु उद्देश्य दुर्गम लिने लागु लागा या मनोतेता बाल्नागु शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा लल ह्यागु दलित सीमान्तकृत व थिथि विपन्न मचा मस्तेता ग्वाली यागु स्वास्थ्य बिमा तब्याकेगु औकिया नीति मागु आर्थिक स्रोत लल ह्यागु प्रधानमन्त्री धापुदु वेक्ल सकल मनुतेगु तह स खनेदुगु समता कर प्रतिया लिस सरकार या आपल ध्यान कोसागु मनुतेगु माग नेना निहज्याता व समतामूलक समाज त स्वाक्यता थ निहज्याता कुत यानागु वेक्ल ध्यादिल छुन कोचिना याता कया सकल मनुत असन्तुष्टि जुसा वुकिया त भिङ्के त सरकार सदा हथ्या चया गुण प्रधानमन्त्री शाह नेथना दिगुदु प्रधानमन्त्री शाह विपन्न गरिब मनुतेगु गुणस्तरीय शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा क्या दे फेमा धैगु आज निजी अस्पतालले झिगु लासा व निजी अस्पताल व विश्वविद्यालयके झिगु प्रतिशत सिट पारदर्शी न्यायचित कथ लल ह्यागु नीति छेलाबुला याता सरकार प्रतिबद्ध जुयागु धयादिगु ख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वदेशी उत्पादित तयारी वस ज्वल उद्योग विकास नीति सरकार कटिबद्ध जुयागु धयादिगुदु तयारी पोषक उद्योग संज्ञा पदाधिकारी नाफाम हिग प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषदीय कार्यालय गोसागुगु सहल सह वेक्ल तयारी पोषक उद्योग ल्हावापी व्यवसाय तेगु हित सरकार सदा प्रतिबद्ध जुयागु धयादिला प्रधानमन्त्री शाह तयारी पोसाक उद्योग नापा स्वपुदुपी व्यवसाय नापा या सलिपा विभागीय मन्त्री यता थते टेक्सटाइल एन्ड क्लोदिङ डेभलपमेन्ट काउन्सिल निसो नेता ओजम्बिया दिगुदु क्वेकल्यान्ड ठेवामाया व्यापार सम्झौता एफटिए व वैदेशिक लगानी एफटिआई हेता कुतयाना चोनागु व पोसाक वस्तु अमेरिकाकै दिका तगु व टेस्टिङ सर्टिफिकेसन मधुगुली उकिया लचाकेता परराष्ट्र मन्त्रालय याता नापा उजम्बिया दिगुदु निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त तेगु संसदीय सुनवाई थो हे श्रावण 12 और 13 गते जुई तेङ्गुदु संसदीय सुनवाई समिति हिगो सङ्गु बैठक निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रस्तावित मानबहादुर कार्की आयुक्त तेके प्रस्तावित डाक्टर राजीव सुब्बा वा गुरु प्रसाद वागले संसदीय सुनवाई श्रावण 12 और 13 गते याएको कोचिगु ख संसदीय सुनवाई निहने समिति प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा आयुक्त पिम विरुद्ध लागु उजुरी सहल याना सुनवाई याएको समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ जानकारी व्यादिगु ख प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग प्रस्तावित मानबहादुर कार्की विरुद्ध छगु उजुरी लागु आयुक्त तेके प्रस्तावित सुब्बा वाग्ले विरुद्ध छुन उजुरी मलागु समिति सभापति श्रेष्ठ जानकारी व्यादिगुदु मडिको वोगु वालिपा वोगु खुसीबा व चलया चलख याना देन्यङ्क हेगु प्रमुख राजमार्ग डिना चङ्गु दुसा झिन्गु राजमार्ग भटिचा सेना चङ्गु धागुदु सडक विभाग डिना तगु सडक मध्ये ने छगु सडक देके धुङ्कानी हान निहा धुङ्कगु दुसा ल्याउँदुगु सडक चाके गुजिया जुया सङ्गु धागुदु विभागीय प्रवक्ता श्याम बहादुर खड्का चलाया हुने डिना सङ्गु सडक चाके त स्वपुदुगु थासे डोजर छेला डेके गुज्या व चल चिके गुज्या जुया चोङ्गु वेक्लङ्कना दिल नापामा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पी पेक गुलुमन्ती दिवस थौ तिथि जाजो नापाहना सङ्गुदु विक्रम सम्बत 1971 साल भदौ 24 गते जन्म जुमा बिपी कोइराला 2039 साल साउन 6 गते सिगुख नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता कोइराला राणा शासनका नेपाली प्रजातन्त्र पलिस्ता याता भालाकुबिया दिगुख भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलने मधुमा कोइराला बोटिकया दिगुख सबैक 2015 साल आम निर्वाचने नेपाली काङ्ग्रेस सोवे निवो हया नेपाया नापामा बहुमत जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री जुयादिगु खा नेपाली कंग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा शिक्षा व स्वास्थ्य छगु सोङ्गु प्रतिशत समता कर्चिकेगु सरकार को छिनायाता कया लसकुस पोङका दिगुदु मिग सामाजिक सञ्जाल पाखेन सभापति थापा थो व्यवस्था अनुपयुक्त जुगु ख थपिसा नापा निसियल हनावया चोङ्गु नेथना दिसे शिक्षा व स्वास्थ्य विलासित मजुगु तया दिगुदु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाया संयोजक व पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लिपाङ इले वामपन्थी शक्ति दोथी सहकार्य लकस देका गु थया दिगुदु जनकपुर थामे विमानस्थले मिग सनिल संचा कमिनापा बचाएको खलापला व्याका दिशे संयोजक दाहाल न थगु पार्टी नेकपा एमाले नापा सहकार्य प्रक्रिया औपचारिक कथन हेज्यागु नेथना दिलस सोङ दल दतिया समझदारी अजन लिपाङ लिचोखे मठ्यङ्गु कना दिसे संयोजक दाहाल प्रदेश सरकार सत्ता साझेदारी विशेष नेपाली कङ्ग्रेस नापा न सहल जुया चङ्गु धया दिल नेकपा मधेस प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण ज्याझोले बुतिकाता जनकपुर धाम ठेङ्काझामा संयोजक दाहाल पार्टी प्रशिक्षण हो संगठन शुद्धिकरण यता प्राथमिकता नापा हज्या केगु नेथना दिल नेकपा मधेस प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण ज्याझो यता बुधबार साउन छ गते पार्टी संयोजक दाहाल सह संयोजक माधव कुमार नेपाल व वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ क घाइगु ज्याझो दु सेनाचङ्गु सहकारी व्यवस्थापन समिति लाली गुरा सहकारी हो तपाईँ हाम्रो सहकार्य साना बचतकर्ता या बचत लित बिगुको छ गुदु समिति कथा लाली गुरा सहकार्य स्विङमा तपाईँ हाम्रो सहकार्य गुईमा बचतकर्ता बचत लिता क्या खङ्गु ख सरकार सेनाचङ्गु सहकार्य लि ऋण असुलीसँग वोगु ढेबा हे पीडित बचतकर्ता त्यता लिता बियागु थागुदु बजाङया कोट देवल केन्द्रबिन्दु जुया थौ सुते पेता इजुया पिगु मिनेटे पेङ्गु फुटी निगु म्याग्ना चुटिया भुखा भोगुदु राष्ट्रिय भूकम्प मापन व अनुसन्धान केन्द्र NEMRC खानी तथा भूगर्भ विभाग या कथा भुखा या केन्द्रबिन्दु बजाङया कोट देवल लागा जुगु धागुदु फुकास जुगु मानवीय वा भौतिक क्षेत्रीय धलदासा आतक वोगु मधु यहाँ किपु नगरपालिका एक ट्याङ्ला फाट्या मिग छ ग कार्य आका झका मिछो धुङ्कानी उकी दुमा छमा मनुष्युदु मिछोगु हुने कारसँग प्रहरी छमा मिचया सीमा लुई कागु उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नरेश राज सुवेदी जानकारी बियादिगु खसा वेक कथ ये महानगरपालिका 26 ने हुई नेखुद दुमा सुरेश चन्द श्रेष्ठ जुगु जानकारी बियादिगु ख नेपाल कानुन आयोग कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन सार्वजनिक यागुदु कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम मिग दिग्दर्शन पिथना दिगु ख वेकलन दिग्दर्शन कानुन तर्जुमा याबले कानुन या भाषा संरचना विषयवस्तु कगागुले कानुन या स्वपुतै पिस थुकियाता छेलाबुला या फैगु व ग्वाली ठेनीगु भलसा कया दिगुदु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नागरिक आन्दोलन या नेहलुवा डाक्टर देवेन्द्र पाण्डे मधुगु लिता दुःख पङ्का दिसे बिचाहेका दिगुदु राष्ट्रपति पौडेल मिग छोया दिगु समवेदना हसना मधुमा पाण्डे साधना मुख्यतया स्वतन्त्रता अधिकार हो नागरिक आन्दोलन आपन फालामिता दिगु नेथना दिगु खस वेक क्यान्सर या हुने साउन 1 गते सिगु ख अन्नबालीय न्यूनतम समर्थन मु निर्धारण लिपा मु छेलाबुला व अनुगमन विशेषज्ञ कृषि व उद्योग मन्त्री दति सहल जुगुदु कृषि वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति गौरी कुमारी दति नेपाल या खाद्य प्रविधि व गुण नियन्त्रण विभाग व भारत या FCAI दति जुगु थथेवया मान्यता सम्झौता याता चियासा नापा छेलिगु विशेष नेपाल भारत व्यापार व पार वहन अन्तर सरकारी समिति सह कुतयागु विशेषण खलावला जुगु ख कर्मचारी दति हा वागु दुर्व्यवहार यागु दोपसा पर्साया कालिका माई गाउँपालिका वडा नम्बर 3 या वडा अध्यक्ष सञ्जय पटेल यता प्रहरी जोङ्गुदु गाउँपालिका ज्यान छमा छमा कर्मचारी यता कार्यालय लागा दुनिहे दागु झाका अभद्र व्यवहार मुद्दा कथौ वेक यता जुनागु इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया जानकारी बिगु खस झाका लावा पिमेपी दोपन लापिन त मालिगु ज्याजुया चोङ्गु प्रहरी यता पुदु तनहुया ब्यास नगरपालिका साते दुगु कलेस्थी त्याम हिग बस आँखा जुबले झिङ्गामा मनु कापा जुगु दुसा कापा जुपी मध्य चालक अवस्था दास त चोगु प्रहरिया धापुदु आदेश पिनिया बुख अन्तर्राष्ट्रिय मुर्दा कोष आइएमएफ युक्रेन या ऋण ज्याजु या समीक्षा या से युक्रेन या तथ्य खुई गुगु करोड डलर अज उप ऋण तनिगु घोषणा या गुदु युक्रेन आर्थिक स्थिरता कायम ते त स्थिति सुधारे मागु ज्याया त दबाब या चोङ्गु इले रुस थगु आक्रमण मड्डिक न्याकेगु न्याका चोङ्गु थो ई या समीक्षा वगु ख सन् 2022 या नापा रुस युक्रेन दथि आक्रमण याना निगु दे दतुया ल्वापु धासा आतकन ह्याना चङ्गु दु मौसम या जानकारी थौ कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश तराई या छुन थासे ओ मधेस प्रदेश सुदूरपश्चिम या तराई लागाया मोह थासे मला नापा लाप्सा तोया भतिचा वा वैगु सम्भावना खुबिगु दु बागमती गण्डकी प्रदेश या पहाडी ओ तराई लागाया मोह थासे कोशी लुम्बिनी प्रदेश पहाडी लगाया छगु निगु थासे आप्लाङ वा वैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी बिगु खसा वङ्गु निपे घौस ये सोनिगया क्वाज नि नेगु फुटी न्यागु डिग्री सेल्सियस जति चङ्गु खसा थौ सुथे ये सोनिगले थौ ये सोनिगले क्वाज नि च्यागु निसिन सुइगु डिग्री सेल्सियस जति लुइगु धुकुमा दु थौ सुथे ये सोनिगले ज्ञाता इजुया झिम्पेङ्गु मिनेटे लुयागु सूर्य शनिल नेता इजुया पेङ्गु मिनेटे बी रेडियो नेपाल र नेपाल भाषा समाचार पुन चिताइले नेपाली भाषा या समाचार नेना दिस शुभ
1: उच्च गति भरपर्दो कनेक्टिभिटी र बलियो नेटवर्कद्वारा सञ्चालित सिमलेस ब्राउजिङ र स्ट्रिमिङका लागि डिस होम इन्टरनेट अत्याधुनिक प्रविधिको नेपालमा पहिलो पटक वर्ल्ड क्लास इन्टरटेनमेन्टको आइपिटिभी सेवा प्रदान गर्ने डिस होम इन्टरनेट नेपालको एकमात्र नेक्स्ट जेनेरेसन वाइफाई 6 प्रविधि भएको वाइफाई 6 राउटरहरूसँग उत्कृष्ट जडान प्रदान गर्ने डिश होम इन्टरनेट साथै इन्टरनेट टिभी र अन्य सेवाहरू सजिलै व्यवस्थित गर्ने एउटा उपयोगी सेल्फ केयर एप माई डिश होम एप
2: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
3: राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार

0: जु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिर रेढाङ निधा झेनमुला ङ इन्दिरा थिङ सरकार से मुगुला सोरु गाउँपालिका घिग्ला गणेश नेपाली सिबा ताम्री च्याबा गोबारी न्यायिक समिति सोबा मुला सिबा काइब्लोन थेनब्लोन सेङझाङला गेजाङ सिंहदरबारी तिनी चिबा ब्लोन सेङझाङला गेजाङसे ग्रेन ठिमखाङला गाछाला ठिम्पोन केशव प्रसाद भास्तोलाला थुतबोन री समिति सोबा मुलाबिसी स्यार थेन क्लाङब्लोन थेन सरकारला सुङबोन सस्मित पोखरेल से सुङबा मुला समिति री गाछाला रो ठिम्पोन कृष्ण मोहन कोइराला थेन गाछाला रो लोन रामु राज कडरिया सदस्य थान्बा मुला चिसाङसे समिति दा निश्रा नाङ्ग्री घटना दा च्यासी घोषी प्रतिवेदन पिनबारी पाङबा मुला नेपालीला निभा असार निचुई ढुला कुनो वीर अस्पताल ला बन युनिट्री मन लवन लामा सिबा मुबा काइब्लोन बालेन्द्र साहसे हस्तकला छोङबोन सम्बन्धी नीति शोभा हस्तकला छोङबोन कडेला संरक्षण थिएन हस्तकला दा पुस्तान्तरण लाभा ताम्री सरकार प्रतिबद्ध मुलाबिसी सुङबा मुला काइब्लोन थिएन ब्लोन सेङझाङला गेजाङरी तिनी सेङबा काठुरी काइब्लोन साहसे सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपिपिपी मोडेल डी हस्तकला विकास बोर्ड शोभारी सरकारसे माइबन मुलाबिसी सुङबा मुला काठुरी नेपाल हस्तकला छोङबोन महासङ्घला मुल्मी कादेशे हस्तकला छोङला विकास दा लेना लाबारी सरकार थेन डिक्सी गे लाबारी राङ कादेला सेम मुला बिसी सुङबा मुबा सरकारसे निजी स्यार्थेन लुई थुम्री किन्बा विवाह सोम प्रतिशत समता कर याइसी किन्बासे ढेन लाबान सम्बन्धित थुम्ला मिनिका देशे पाङबा मुला काइब्लोन बालेन्द्र साहसे तिलमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ग्याम सरकारसे निजी स्यार्थेन लुई थुम्री किन्बा विवाह सोम प्रतिशत समता टाङ्ग आकिन्बा निर्णय लाबा मुला बिसी सुङबा मुबा सरकारसे सोम प्रतिशत समता कर याइसी किन्बा विवाह लिछा स्यार्थेन लुई थुम्ला सरकार थान्बा मिनी कादेशे सरकारला घोषणा दा झ्याबा मान्बा मुला राष्ट्रिय अभिभावक महासङ्घला गाछाला चोहो सुप्रभा सुप्रभात भण्डारी प्याप्सनला लोन्चेन आर बी कटवाल एन प्याप्सनला चोहो सुभाष नेउपाने थेन चु थुम्ला सरकार थान्बा कादेशे सरकारला समता स्यारी किन्बा कर याइसी किन्बा निर्णय दा ढेन लास्युबा मुला नोर ब्लोन डाक्टर सोर्णी मुआग्लेसे स्यार्थेन लुई थुम्री किन्बा विवाह सोम प्रतिशत समता शुल्काला टाङ्गा आकिन्बा निर्णय लाबा मुला बिसी सुङबा मुला काइब्लोन बालेन्द्र साहथेन काठु लाबा लिचा नोर ब्लोन डाक्टर वाग्लेसे ब्लोन स्तरीय निर्णय लासी धातेदा चु टाङ्गा खारेज लाबा निर्णय लासी बाहिनला किन्बा विवाह टाङ्गारी मिनीला गुनासो लेबा लिचा सरकारसे चु निर्णय लाबा हिनला चुनोन ताम्री ओने काइब्लोन थेन नोर ब्लोन घुङरी काठुई ताबा मुबा सूचना थेन संचार ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमिल सिनासे ब्लोन खाङ थेन चुङामला मोकोन निकायरी जिम्मेवार उत्तर थाई थेन प्रशासनिक सुधार लाबान चु नोर दिङला ठिम गेखोर थेन बजेट सेङबारी सुङबा मुला ब्लोन खाङरी तिनी चिबा कर्मचारी कादेला चिसाङरी ब्लोन तिमिल सिनासे ब्लोन खाङ घ्याम्डोन निर्णय ताबारी खाम्बा फाइल तिरारिन टुङ्गो लाबाथेन अन्तर निकाय समन्वयदा तोबा फाइल घारा नाङ्ग्री निर्णय लासी सेङबारी सुङबा मुला सेवादा पारदर्शी थिएन डिजिटल सोबान ठिम सोबारी थिएन बजेट सेङबारी नतिजा थिएन थुइबारिन ब्लोन तिमिल सिनासे सुङबा मुला ज्ञात थिएन व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागसे श्रमिक थिएन पीडित कादेशे पिन्बा उजुरी निवेदन दा गेजाङ ग्रेनपो थिएन सम्बन्धित कर्मचारीसे याङबा घण्टा गिक नाङ्ग्रिन लातोबालासी निर्देशन पिन्बा मुला विभागसे राङ नाम्ला मोकोन ज्ञात थिएन रोजगार गेजाङ कादे थिएन व्यवसाय जन्य सुरक्षा थिएन लुई केन्द्र दा चिठी पुइबान चु निर्देशन पिन्बा हिला गाछा गाछा लोलो लोलो माध्यम हलो सरकार ब्लोनखाङ वा विभाग ग्याम खाबा वा सिदान गेजाङरी पिन्बा उजुरी कादे दुईरिन आच्याबा कर्मचारी कादेसे ज्याबा व्यवहार आलाबा थेन गे कादे लाबारी गाईबा विवा ताम ब्लोन ओन्छाङ नोन ताम दोबा लिछा विभागसे चुरङबा निर्देशन पिन्बा हिनला गिक्षा रेम मिनिसे दाम्बा काइब्लोन विशेषोर प्रसाद कोइराला राधा डान्बान तिनी ह्युल नाङ्री ब्लिचुई ब्लिचा बिपी डान दिन्छेन लोलो लोलो गेखोर सेङसी थाङ बर्मुला प्रजातन्त्र बाबारी ग्रेन सङ्घर्ष लास्युबा बिपिला विक्रम सम्बत 2039 साउन ढुला कुनु ढोङबा मुबा नेपाली सेमलेङ्री ग्रेन रो लास्युबा कोइराला विक्रम सम्बत 1971 साल भदौ निची भ्लिला कुनु केस्युबा हिँला विक्रम सम्बत 2015 ला संसदीय चुनाव लिचा विक्रम सम्बत 2016 जेठी कोइराला गिक्षा मिनिसे धाम्बा काइब्लोन तासिबा मुबा बिपी डान दिन्छेन लाभसरी काङ्ग्रेस चु गामला गेन्दुन थेन बिपी संग्रहालय समिति से ह्युल नाङ्री लोलो लोलो गेखोर सेङसी धाङबान मुला चु नोरदिङला बजेट प्रभावकारी लासी सेङबारी नोर ब्लोनखाङसे मोकुन ब्लोनखाङ आयोग लोनखाङ थे निकायदा बिचु निसबुदे बजेट सेङबा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी लाबामुला ओने सोमबार तेबा मार्गदर्शन ढी बजेट थेन गेखोर्दा तोक लाबा धुई नाङरिन सेङसी पुँजीगत खर्चला प्रभावकारिता लेना लाबारी स्रोत साधनदा झ्याना लासी उपयोग लाबारी थेन विकास आयोजनाला प्रगति नियमित अनुगमन लाबारी पाङबा मुला प्रतिपक्ष दल कादेसे विपद व्यवस्थापन डी सरकार से गाछन लातोबा तयारी ला ताम्री दिम ब्लोन ला ध्यान आकर्षण लाबारी तिनी राष्ट्रिय सवारी जरूरी सार्वजनिक महत्वला ध्यान आकर्षण प्रस्ताव धर्ता लाबा मुला राष्ट्रिय सवारी जरूरी सार्वजनिक महत्वला ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेस ला राष्ट्रिय सभा संसदीय दल ला गोबर कमल पान्तमुला काङ्ग्रेस ला सचेतक पदम बहादुर परियार नेकपा एमाले ला सांसद सोमनाथ पोर्तेल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीला ग्रेन सचेतक मदन कुमारी शाह गरिमा थिएन जनता समाजवादी पार्टी नेपालला सांसद पूजा चौधरी से प्रस्तावला समर्थन लास्युबा मुला प्रस्तावरी मनसुन तिबा छ्याम ह्युल नाङ्री भाल ढुई तिप्लिङ थिएन ग्लिङ ग्योई थोबा जोखिम राङ्सी चिबा धुइरी तोबा तयारी आलाबा विमान दिम्ब्लोन थिएन जवाफ रिबा मुला लाना नाम ताइसी भाल थेन ढुइसे जोखिम ताबा लिचा युला घ्ला घ्लाला ग्रेन राजमार्ग कादे प्रभावित ताबा मुला नेपाल प्रहरीसे सार्वजनिक लाबा लिछाला विवरण अनुसार काभ्रे पलाञ्चोक थेन सिन्धुली थुइबा बिपी राजमार्गला खुरकोट नेपाल थोक कटुन्जे बेसी सडक घ्यालाम्री भाल ला जोखिम दा च्यासी दोषी आर्को सूचना आतादे धोना न्यासेला ढु घ्यामा हेन्से सियोला ब्ली घ्यामा धोना खाजिबैनुन मोटर कादेदा ब्राबारी आपिन बा ताबा मुला चुराङ लासिन मकवानपुरला कान्ति लोकपथ रिनुन न्यासेला घा घ्यामा हेन्से सियोला घा घ्यामा धोना मोकुन सवारी साधन कादे सेङबारी आपिन बा ताबा मुला टिचिङ अस्पताल से नाङ्गार त्रिभुवन विश्वविद्यालय दिन्छेन लाभ सरी सियोला गाङसाल दुई जेखेन सेङबा ताबा मुला बिसी पाङबा मुला अस्पताल प्रशासनला घ्रेनपो भोज राज भट्टासे तेबा कागुरी त्रिविवि दिन्छेन से लामा इमर्जेन्सी सेवा भीमा अस्पताल ग्याम पिनबा मोकोन धिनीला सेवा कादे बन्द तासेदा मुला बिसी सुङबा खिन्ला दाङला तुलसीपुर उपमहानगरपालिका डु रजौ रारी सोभान लाबा धिम्ला क्युई ट्याङ्की नाङ्री निसास दिसी भेन्दोनी मिनी सिबा मुला निसास दिसी सल्यान ला माल्टा धिम तासी दाते तुलसीपुर कु दोहरे चिबा कमल गिरी थेन घनश्याम गिरी सिबा मुला सिबा कादे आगु कोला हिन्ला बिसी प्रहरी से पाङबा मुला स्यान सिबन मुबा साङ्गुर झिन्जी फ्याफुल्ला
1: के तपाईँ खोला नदीनाला छेउछाउमा बसोबास गर्नुहुन्छ होसियार बर्सातको समयमा खोला नदीमा पानीको सतह बढेमा तुरुन्तै अग्लो र सुरक्षित स्थानमा जानुहोस्
2: विपद बाजा बजाएर आउँदैन त्यसैले बाढी पहिरोको जोखिम हुने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण कागजात र आपतकालीन सामग्री तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्
1: हल्लाको पछिन लागि आधिकारिक सूचना र मौसम सम्बन्धी जानकारी लिनुहोस्
2: रेडियो नेपालद्वारा जनहितका लागि

यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। सरकार मीटर ब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखित सब आइए के समयसँ अवैध घोषणा करबाक निर्णय कयलक अछि। मन्त्री परिषदके आजुक बैठक पश्चात सरकारके प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल मीटर ब्याजसँ प्रभावित नागरिकके माग सम्बोधन करबाक सम्बन्धमे गठित समिति आ मीटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदूर आन्दोलन के प्रतिनिधि बीच भेल समझौता अनुमोदन करबाक निर्णय भेल जानकारी देलनि। अहिना मंत्री परिषद बैठक सँ गणेश नेपाली आत्मदाह घटना के सत्य तथ्य छानबीन करबाक लेल उच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश केशव प्रसाद बास्तोला के संयोजकत्व में न्यायिक समिति गठन करबाक निर्णय केने जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री पोखरेल देलनि। मन्त्री पोखरेल 2085 साल भादो मसान्त धरि पोखरा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँ होवला नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानके लेल पार्किङ, ल्यान्डिङ आ नेभिगेसन शुल्कमे पूर्ण छुट तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमे 50% छुट देबाक निर्णय भेल जानकारी देलनि। मन्त्री परिषद बैठकसँ आर्थिक ऐन 2083 के दफा 18 के उपधारा दफा 1 बमोजिम शिक्षा समता शुल्क आ स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमे मिन्हा करबाक निर्णय केने मन्त्री पोखरेल बतौलनि। मन्त्री पोखरेल विशेष अदालत के अध्यक्ष पद में उच्च अदालत तुलसीपुर के न्यायाधीश वासुदेव आचार्य के तोकके तथा श्रम अदालत के अध्यक्ष पद में उच्च अदालत सुर्खेत के माननीय न्यायाधीश दीपेंद्र अधिकारी के तोकके निर्णय केने जानकारी देलनि। अहिना बैठक से गुठी संस्थान के प्रशासक पद में शैलेश राज कुंवर के नियुक्त करबाक निर्णय केने मन्त्री पोखरेल बतौलनि अछि। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हस्तकला व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण, हस्तकला व्यवसायके संरक्षण, रोजगारी सृजना आ हस्तकलाके पुस्तान्तरण करबाक विषयमे सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदके कार्यालयमे आयोजित विचार विमर्शमे ओ सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमे हस्तकला विकास बोर्ड गठन हेबाक चाही मागप्रति सरकार सकारात्मक रहल बतौलनि। परामर्शके क्रममे नेपाल हस्तकला व्यवसायके महासंघके प्रतिनिधि सब वर्तमान सरकार हस्तकला व्यवसायके प्राथमिकता देने स्वयंके महसूस भेल कहैत सरकारसँग कोनो किसिमके सहकार्य करबाक लेल तैयार रहल बतौलनि। एखन धरि महासंघ अगहन 28 अपने ढंग से हस्तकला दिवस मना रहल अवस्था में आब राष्ट्रीय स्तर में मनाल जबाक चाही महासंघ के पदाधिकारी सब मांग कलक अछि। तहिना हस्तकला सामग्री निर्यात अखन धरि स्वघोषणा में भ रहला सँ एहि के सट्टा बीजक मूल्यांकन अनिवार्य कला पर राजस्व वृद्धि में सहयोग पहुँचत से पदाधिकारी सबके सुझाव हिसाबे काज कयल जबाक प्रधानमंत्री शाह आश्वस्त कयलनि। हस्तकला सामग्री निर्यात कला पर भेटवला ओहिके 5% रकम 3 वर्ष एम्हर रोकल गेला पर प्रधानमंत्री शाह के पुनः निरंतरता देल जेबाक विषय में सेहो आश्वस्त हेबाक लेल व्यवसायी सब के आग्रह कयलनि। हस्तकला के समान उत्पादन आ विकास के लेल उद्योग विभाग के सार्क हस्तकला विकास केन्द्र के भवन निर्माण भ चुकल बावजूदो एत कोनो कार्यालय रहला में एहन कार्यालय के स्वयं सब के फिरता हेबाक चाही मांग पदाधिकारी सब रखने अछि। एम्हर उपत्यका मे हस्तकला ग्राम खड़ा करबाक आ सातो प्रदेश में हस्तकला संबंधी सी प्रशिक्षण केन्द्र खोल के विषय में प्रधानमंत्री शाह विशेष इच्छा देखने छलथि। शिक्षा सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा मंत्रालय आ माथहात के सब निकाय में कम जिम्मेवार उत्तरदायित्व आ नतीजामुखी कार्य संस्कृति विकास का व्यापक प्रशासनिक सुधार के साथ चालू आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम आ बजट कार्यान्वयन करबाक लेल निर्देशन देलनि अछि। आई संचार मंत्रालय में आयोजित कर्मचारी बैठक में ओ मंत्रालय से निर्णय होवय वाला फाइल एक ही दिन में निष्कर्ष लगाब के तथा अंतर निकाय समन्वय आवश्यक फाइल 5 दिन भीतर अंतिम निर्णय में पहुँचबा व्यवस्था लागू करबाक सेहो निर्देशन देलिन। संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा दैनिक कार्य संपादन समीक्षा नियमित अनुगमन आ कार्य संपादन समझौता के आधार पर मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी बनाबर निर्देशन दैत नीक काज करवला के प्रोत्साहन आ लापरवाही करवला के कार्रवाई करबाक व्यवस्था संस्थागत कयल जेबाक चाही बतौलन। सेवा प्रवाह के शीघ्र पारदर्शी आ डिजिटल मैत्री बनबित कानून निर्माण आ बजट कार्यान्वयन की नतीजा संग जोड़ पर जोड़ दिलन। समीक्षा बैठक विगत के मूल्यांकन में सीमित निभ सुधार के नया आधार बनवाक चाहिए बतावित ओ कर्मचारी अपने जिम्मेवारी के संदर्भ में आत्म मूल्यांकन करत समस्या समाधानक लेल समय में नेतृत्व के जानकारी करवाक चाहिए बतौलनि। ओ प्रत्येक कर्मचारी अपन शाखा से दैनिक रूप में सम्पन्न भेल काज के जिम्मेवारी

लेबाक चाही बतबैत विधि आ प्रक्रिया पालन करैत ऐन कानून निर्धारण कयने उद्देश्य हिसाबे परिणाममुखी ढंग सँ काज करबाक लेल सेहो निर्देशन देलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रिय स्वाधीनताके रक्षा करबाक लेल परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक शक्तिबीच सहकारी आवश्यक रहल बतौलनि अछि। जनकपुरधाम स्थित महेन्द्र नारायण निधि प्रतिष्ठानमे आयोजित नेकपा मधेश प्रदेशके एकता बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममे मधेश प्रदेश समितिके पदाधिकारी तथा सदस्यके शपथ ग्रहण करबैत संयोजक दाहाल देशके राष्ट्रिय स्वाधीनता संविधान आ संघीय व्यवस्था उपर विभिन्न कोणसँ चुनौती थपायल गेलासँ परिवर्तनके पक्षमे संघर्षके राजनीतिक दलसँ बीच सजिया समझदारी आ सहकार्य अपरिहार्य रहल बतौलनि अछि। वामपन्थी कम्युनिस्ट घटकसँ बीच ध्रुवीकरण करैत एकताके पहलकदमी अपन पार्टीके कन्हापर अयलासँ संयोजक दाहाल सहकार्यमे विशेष नेकपा एमाले सङ्घ सेहो प्रयास भऽ रहल बतौलनि अछि। श्रम तथा व्यवस्थाजन्य सुरक्षा विभाग श्रमिक तथा पीड़ित देने उजूरी वा निवेदन के कार्यालय प्रमुख आ संबंधित कर्मचारी प्राप्त भेल एक घंटा भीतरे संबोधन करबाक लेल निर्देशन जारी कयलक अछि। विभाग अपन माथात के सब श्रम तथा रोजगार कार्यालय आ व्यवस्थाजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केंद्र के मंगल दिन परिपत्र जारी करैत ई निर्देशन देलक अछि। विगत में हेलो सरकार मंत्रालय व विभाग लगायत विभिन्न माध्यम सँ आयल व सीधे कार्यालय में दिने उजूरी समय में संबोधन नहीं भेल कर्मचारी उचित व्यवहार नहीं केने आ न्याय देवे में ढिलाई केने शिकायत अयलाक बाद विभाग एहन परिपत्र जारी कयलक अछि। श्रमिक के उजूरी व निवेदन प्राप्त भेल एक घंटा भीतरे संबोधन का ओहि के जानकारी संबंधित व्यक्ति के देल जेबाक चाही तथा सुशासन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन 2064 के निजामती सेवा ऐन 2049 बमोजिम कर्मचारी अपन जिम्मेवारी आचरण के पालना करबाक चाही परिपत्र में उल्लेख रहल अछि। बाजार में देखल गेल आर्थिक तरलता के बावजूद आंतरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधाम धनसा आर्थिक वर्ष 2082-83 में 6,06,78,88,000 राजस्व संकलन कयलक अछि। आंतरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधाम के प्रमुख आनंद कुमार गुप्ता के हिसाबे विभिन्न अभियान मार्फत पुरान बक्यौता सुलिया बाजार अनुगमन के तीव्रता देलाक बाद लक्ष्य के 88.49% राजस्व संकलन भेल अछि। आर्थिक वर्ष 2082-83 में ई कार्यालय अंत शुल्क दिस 2,55,07,30,000 आय कर दिस 2,06,82,01,000 आ मोल अभिवृद्धि कर दिस 1,28,40,99,000 राजस्व संकलन कयलक अछि। बागमती प्रदेश में नेकपा एमाले प्रदेश सरकार से बाहर होबक के निर्णय कयने संगे सरकार के देने समर्थन फिरता लेलक अछि। नेपाली कांग्रेस के गठबंधन में बनल सरकार देने समर्थन एमाले फिरता लेलक अछि। एमाले आई प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा के कांग्रेस के नेतृत्व में बनल सरकार के देने समर्थन फिरता के पत्र बुझौने अछि। नेपाले के नेता एवं कृषि पशु पक्षी वन तथा वातावरण मंत्री मधुसूदन पौडेल सहित के एमाले मंत्री सब कांग्रेस नेतृत्व के सरकार के देने समर्थन फिरता लेने पत्र बुझौने अछि। समर्थन फिरता के पत्र एमाले संसदीय दल के नेता जगन्नाथ थपलिया हस्ताक्षर कयलनि अछि। एहि बीच कांग्रेस एमाले बीच 2 वर्ष पहिने बनल गठबंधन टूटल संगे बागमती प्रदेश सरकार अल्पमत में पड़ल अछि। प्रदेश प्रमुख देवकोटा समक्ष बुझायल गेल पत्र में मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया नेतृत्व के सरकार के देने समर्थन फिरता लेने उल्लेख रहल अछि। बीतल समय देश के गौरव के रूप में रहल बीरगंज चीनी कारखाना तत्काल पुनः संचालन करबाक लेल मांग करैत नागरिक स्तर से सरकार के 72 घंटे अल्टीमेटम देने अछि। बीरगंज चीनी मिल पुनः संचालन करबाक लेल नागरिक अभियान के संयोजक अफजल हुसैन जिला प्रशासन कार्यालय परसा मार्फत आई सरकार के ज्ञापन पत्र बुझाबैत निर्धारित समय भीतर ठोस पहल नहीं भेल त शांतिपूर्ण आमरण अनशन शुरू करबाक चेतावनी देलक अछि। वर्षों से मिल बंद भेला से स्थानीय किसान मजदूर आ व्यवसायी मार में पड़ल तथा हजारों के रोजगारी गेल अभियानी के कहब छन। अभियान सरकार समक्ष 5 बूंदे माग आगू बढ़ाबत मिल पुनः संचालन के स्पष्ट कार्य योजना सार्वजनिक करबाक लेल आवश्यक बजट तथा कानूनी प्रक्रिया आगू बढ़ावा तीनों तरह के सरकार बीच समन्वय करबाक लेल आग्रह कयलक अछि। जननायक बीपी कोइराला के 44वां स्मृति दिवस धनसा में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना क मनाल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस धनसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के नगराय नगरपालिका के वार्ड नंबर 1 हाँसपट्टी में आज वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भेल अछि। कार्यक्रम में विभिन्न जाति के 200 से अधिक गाछ सब रोपायल अछि। कार्यक्रम में सहभागी वक्ता सब बीपी कोइराला नेपाल के प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमंत्री हेबाक संगे नेपाली कांग्रेस के संस्थापक नेता भेला से हुनक आदर्श विचार तथा सिद्धांत कांग्रेस के मार्गदर्शन भेल बतौने छलथि।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बारा पर्सा भकबहवला शीर्षिया नदीमे प्रदूषण फैलाववला 10 उद्योग उपर कड़ा कार्रवाई कैलक अछि। मन्त्रालय वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन करयवला प्रत्येक उद्योग के 10-10 लाख टका जरिमाना करबाक निर्णय कैलक अछि। कार्रवाईमे पड़ल वीरगंज पथलैया औद्योगिक कॉरिडोर के जगदम्बा स्टील, हुलाके स्टील इंडस्ट्री, शिव शक्ति घी उद्योग, सुशील वनस्पति प्राली, अन्नपूर्ण वेजिटेबल प्रोडक्ट, साइस्टोक, अशोक स्टील इंडस्ट्रीज लगायत उद्योग सब रहल अछि। प्रयोगशाला के परीक्षण के क्रम में उद्योग सब प्रशोधन बिना रसायनयुक्त गंदा पानि सोझे शीर्षिया नदी में फेंकने पुष्टि भेल छल। उद्योग विभाग के महानिर्देशक जितेंद्र बसनेत के हिसाबे कार्रवाई में पड़ल मध्य प्रदेश सरकार के कार्यक्षेत्र में रहल 6 उद्योग विरुद्ध वातावरण संरक्षण ऐन 2076 हिसाबे थप कार्रवाई करबाक लेल संबंधित निकाय में पत्र चार काल गेल अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल वर्दीवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: विचार विमर्श करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल में हस्तकला विकास बोर्ड गठन करने की मांग के प्रति सरकार सकारात्मक है। प्रतिपक्षी दलों ने मॉनसून जनित आपदा व्यवस्थापन में सरकार की पूर्व तैयारी के विषय में गृह मंत्री का ध्यानाकर्षण कराने के लिए आज राष्ट्रीय सभा में जरूरी सार्वजनिक महत्व का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ज कराया है। प्रस्ताव के माध्यम से मॉनसून जनित आपदा व्यवस्थापन के विषय में गृह मंत्री से स्पष्ट जवाब मांगा गया है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने मंत्रालय और अंतर्गत के सभी निकायों में जिम्मेदार जवाबदेह नतीजामुखी कार्य संस्कृति विकास कर व्यापक प्रशासनिक सुधार के साथ चालू आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम और बजट क्रियान्वयन करने का निर्देश किया है। आज मंत्रालय में आयोजित कर्मचारी बैठक में उन्होंने ऐसा निर्देश किया। बागमती प्रदेश सरकार से नेकपा एमाले बाहर आ गई है। एमाले के प्रदेश संसदीय दल के नेता जगन्नाथ थपलिया ने पत्र के जरिए मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया को अपनी ओर से मंत्रियों के संयुक्त इस्तीफे पेश किए। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के संयोजक पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि राष्ट्रीय स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक शक्तियों के बीच सहकार्य आवश्यक है। आज जनकपुर धाम में आयोजित नेकपा मध्येश प्रदेश की एकता बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयोजक दहाल ने कहा कि परिवर्तन के पक्ष में संघर्ष करने वाले राजनीतिक दलों के बीच साझा समझदारी और सहकार्य आवश्यक है। श्रम तथा व्यवस्थापन सुरक्षा विभाग ने श्रमिक तथा पीड़ितों द्वारा दर्ज शिकायतें कार्यालय प्रमुख और संबंधित कर्मचारी के प्राप्त करने के एक घंटे के भीतर संबोधन करने का निर्देश किया है। विभाग ने अपने अंतर्गत सभी श्रम तथा रोजगार कार्यालयों और व्यवसाय जन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केंद्रों को परिपत्र करते हुए ऐसा निर्देश किया। दांग की तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 रजौरा में निर्माणाधीन घर की पानी टैंकी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सल्यान के माल्टा के हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 9 2 घर में रहने वाले कमल गिरी और घनश्याम गिरी शामिल है, ये जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तरी पूर्वी भारत में निर्माणाधीन सुरंग के भीतर मीथेन गैस लीक होने के कारण हुए विस्फोट में कम 20 लोगों की मौत हो गई है। सुरंग के भीतर फंसे 25 लोगों में से 20 लोगों की मौत की पुष्टि भारतीय पुलिस ने दी। मरने वालों में सुरंग के भीतर नियमित निरीक्षण करने वाले NHPC के उच्च स्तरीय कर्मचारी शामिल है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मीटर ब्याज से संबंधित फर्जी दस्तावेजों को आज से अवैध घोषित करने का सरकार का निर्णय। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने हस्तकला व्यवसायी महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ की चर्चा। हस्तकला के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री का कथन। बागमती प्रदेश में नेकपा एमाले ने सरकार को दिया हुआ अपना समर्थन लिया वापस। और भारत में निर्माणाधीन सुरंग के भीतर हुए विस्फोट में कम से कम 20 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: फोर्जी LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले